किद्दो तो गाय तो गाय सो आई रहा भाई ये ट्रॉक ना गई तू ब्रेक कर लो बोन तो भाई जूं कमी ना